0: स्वास्थ्य पर दिया। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी। वैमानिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ उपलब्धि टेली। यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरह से कौशल्य अस्पताल बासखेड़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कर दी।
1: अस्पताल सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के पद ऐसी निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे ऐसी संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर ऐसी प्याज छाती खरीजो नशा मुटु चेक जाँच कैलेखा।
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी, हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी, प्रसूति सेवा, नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे, वीडियो एक्सरे, ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा। सुविधा सम्पन्न ल्याब को सेवा उपलब्ध बा। त्यहाँलाई शिशु को मुख बाग होइन नशा दाग गुलक हाथ गोला हाट्ने चलना बिरामीका फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी विधि बसेर उपचार कैदेखा।
0: नशा दागले बिरामी हुँदै बिना प्रेसर फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
1: 24 घंटा एम्बुलेन्स को व्यवस्था कैदेखा। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवामा 10% छुटके व्यवस्था कैदेखा। कोशीले अस्पताल प्रणाली बासखरी शाखा 5 बासखरी बर्दिया पुरानो पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो। 084400102 बासखरी बर्दिया सँगसँगै फोन

समस्या पढाई में असल पुर्यान सकता साथी को दबाव में होना आपको सपना को पक्ष में निर्णय करूं तनाव में खुला पूरा करूं समाधान लागू पदार्थ होना लागू पदार्थ टाड़ा बसौ स्वस्थ र उजालो भविष्य रोजौ रेडियो खुर्पा एफएम को सहकारी में स्वास्थ्य कार्य प्रत्याट जनहित में जारी सचेत।

फांसी छियासी लक्षण 28 अंग्रेजी था फांसी छियासी लक्षण 28 अंग्रेज में 20 27 29 41 हो मैं एक पक्षवाद में होता उसके दिन

0: स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का टीम वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वस्व रूप में दी यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता का जैसे कौशल अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध दी अस्पताल से दे देना सेवा चौबीसों घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजों नशा मुटू चेक जांच करी था प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशु की सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए चौबीसों घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटू एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध भा पैरालाइसिसों का मुंह बांग बिना नशा दाब गलक हाथ गोरा हरने चलना पिरामिड का नया फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी विधि से उपचार कई देखा
1: नशा दाब गलक पिरामिड के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी से सफल उपचार कर जाए
0: चौबीस घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी भारत नागरिक।

ठेगानामा 084400192 04400192 दास्तरी पर किया संसदीय कोर्ट को लेखना चौथा नंबर के बारे में

0: महिनासम्म आमाको दुधमा देख्छौ स्वस्थ बच्चा उज्यालो भविष्य सन्तान गरौ स्वास्थ्य बनाऊ।
1: सहकार स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा संगीत में लगे सन्देश।

0: होई सात्विक खाना खाई व्यायाम शुद्ध करी
1: धूम्रपान मदिरा मध्ये दूर रही रहना नियंत्रण करी
0: आज निर्णय कार्य जीवन आचार निशाना रोगो ऐसी बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई
1: रेडियो गुरुबाबा सहकार्य स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनहित मंत्रालय संदेश।

शरीर बढ़ दिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हम ऐक्यबद्धता यहां कने स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पड़े में औषधिया अस्पताल बासगरी में संपर्क कर अनुरोध।

Aujourd'hui, qui t'a nous conduit à dire là, que toi, mon père, il se mentait, pour quelques minutes, il t'a montré un peu plus sur le corps. Car il te parle, t'as le gars, il peut nous dire un peu, pour qu'un seul Wilson, que toi, mon fils, ton enlève, que toi, mon père, il te met pas sur ta le gars, qui t'a un peu, pour l'enlève. Parce que les deux pas, il t'a un peu, en plus, le gars, le mort, comme si on y peut, il t'a un peu, pour qu'un seul Wilson, positif dans le corps, somme, super, dans le chèque, avant le pain, il y a un peu de temps. Avant de faire un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ठाकुर बाबू ने पानी का चार पंप हम आज बोखा किया था आज बोखा आए थे बिजुटी फूल खाने के बाद फूल खाने के उस समय बिजुट ठाकुर की समय अपने ठुलक ठाकुर बाबा नगर प्रमुख की तरफ नाम संचने के बाद उन्हें जाकर बोले जाकर खाना फूल का निवास दिन तब बड़ा पानी का कारण पस्ता के बाद तब बड़ा पस्ता के लड़के का जोखिम पालक वहां स्थानीय पर बटल बैठा उसने एक बार बोलते नगर पालिका पास का बनकुशी गाँव में सड़क को खाल डुबान में पड़ रहा वहाँ के कई पालन कसे का चौक में पानी जमा गए आवागमन पर भारत छोड़ा अलग से कोलपुर का निरोट गोल पार क्षेत्र में भी डुबान के कारण सवारी संचालन में कठिन है बिता चल रहा नाला का नियमित साफ सफाई नहीं दिन पोखरी नाला पर का पानी तो निकास बंद हो पाता पसीना पैदा कर पानी दे जो नगर जनमन विरोध स्थानीय वासियों के चले गए था ध्यान करीब पांच बजे से शुरू हुए पानी दोपहर समय पांच बजे तक ढेर था मदर मंगल विरोध निरोध का दीपक था पर जने तो बना था जल के था मौसम विज्ञान विभाग आदमी तीन दिन वर्षों में पानी जारी रहा पर संभावना रहा जने तो बना संभावित कई बार दुकानों लग जाकर

वार्षिक आय के 60 अरब 12 करोड़ 48 लाख 4 हजार रूपया को बजट पारित करवा था। बजट हाइब्रिड सबसे ढेर बजट नेपाल का जो महानगर पालिका का हजार कृषि गांव पालिका मध्य राप्ती सुनारी गांव पालिका आधारित करवा पार्टी का पालिका का बजट विवरण अनुसार नेपाल का जो महानगर पालिका का बजट सबसे ढेर 1 अरब 6 लाख

0: संतति में कृपा आयन करने खाली सुखाई स्वस्थ भाई सुरक्षित परिवार
1: गुरुबाबा को सहकारी स्वास्थ्य कार्य बढ़ते समुदाय

चाकपात मृगारा आरा मछी सिकार ओ फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप खाई जंक फूड कम करी सन्तुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किसी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरुबाबा एफएम

जब गीत बना कविता बना गजल बना, जब गीत बना कविता बना गजल बना, एक ठो मैया करना प्रेमी मैयन पागल बना, जब गीत बना कविता बना गजल बना, मार्ख भूतिया इन सबको आग बढ़ो, मार्ख भूतिया इन सबको आग बढ़ो, कल से कबू पे जिंदगी की यात्रा सफल बना, जब गीत बना कविता बना गजल बना, किरावर कई खूब टाइल बनहार पट्टिया नाप गई हो, किरावर कई खूब टाइल बनहार पट्टिया नाप गई हो, वह सबको सोमर का धर्म कर से माल बना, जब गीत बना कविता बना गजल बना, नाच नटकुर घर पर यार ना भूले हो वो सुख में, नाच नटकुर घर पर यार ना भूले हो वो सुख में, कबो दुख परी मन भूले ना तो हर पहल बना, जब गीत बना कविता बना गजल बना, जत्था से वो उठ रहा फरा अपन जिंदगी हम, जत्था से वो उठ रहा फरा अपन जिंदगी हम, मेहनत करके बनाए और भी पाकर बनाए, जब गीत बना कविता बना गजल बना, एक ठो मैया करना प्रेमी मैं पागल बना, एक ठो मैया करना प्रेमी मैं पागल बना।

मैंने कबीला हमारा कार्यक्रम दस बट को जरूरी दी बजी तरंगे राजा शीर्षक बट को ही तरंगे राजा के तो छावा रही वो छावा एक पटो बाकाई छ खूब पढ़ने में लेखन सीखन गई छ मन सुसला रह दूसरों खबर दिया कि स्कूल पठाए छावा स्कूल पढ़ा जाए उत्ते स्कूल से हम ना हम ना क्या लेकिन बच्चे भीतर नहीं जाए तो सबको बिगा से घर आई ना बेला छुट्टी मिले से घर आए राजा कहा ओहो मत सब पर खाए हरी खाना पीना खोले ना हो दूसरा मस्तरन आयरिश राजा थे बनाए तू राजा आपन राजकुमार है ना स्कूल पकड़े छो हम लोग पकड़ पकड़ कच्ची ले जी छिपे उठ कर चल जाए तू आ सा नहीं पढ़ हम लोग कहाँ से मैं कोशिश करिए एक दिन राजा हेर गेला को छ मारो स्कूल गल न मथे तो नहीं छ दूसरा अपन बाबा देख तो डगोटी जाख एक चाहे तो लुक गेल दूसरा स्कूल भित्ते पे हरियाल तलाश करल उठे से रजब चित्त बिस्किल पूरे से निपट गई खा मस्तर उनके कलक ठीकर रह गई खा दूसरा टंगी पड़ गया आप हर झोपड़ा बन गया लिया हर जुआ पलीवा बसा पलीवा जा छक्कर दिवस डगे राजा घर तक जुआ तक जाए घर बता रहे जुआ तक जा खा फिर हर सर का रुख चाहे दूसरा घर दूसरा घर आए तो बाबा पूछती कठे गट ले छावा कठे गटन बाबा दुई का जोतन दूसरा बाबा जेठी जा रहा था एक गुरफे ने जोतन लिया दादा आ पता है तो एक कूर थी नहीं जो ठहर भेज दिया पति बाबा पढ़ा पढ़े बो पढ़ा नहीं सीखा हर चार पढ़े बो हर चार नहीं सीखा तैयार जो कुछ को पढ़े कितना लग भस के निधान के इसका घाट भस के कर दिली काम नहीं कर सके था प्रधान अधिक समेत आप यह से सीख नहीं आएगी दूसरे लिए अपन जन लिए वो थोड़ा मशीन निकल के जा गए थे निकल गई दूसरा अपन जन्नी लिख निकल गई दोनों जना निम्नता जाए जाए एक ठो बन गई ला दूसरा रात का वक्त जन्नी आयु और आखम गिलीस अपन जन्नी ने कुआरा में कर रिटा रात भर दूसरा एक ठो शहर के रजवा रानी बेन से हुई जा वह डगर में तो लहा दूसरा रजवा रानी देख रहा था स्वाप मैया लगली ते का

समस्या प्रणाली पर्यावरण नियन्त्रण गरी आज निर्णयकारी जीवन रचना निसर्गको मसे गति स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: आपने कहा था आपकी आवाज समाज के रेडियो को साझा आवाज जो रेडियो प्रोग्राम है
1: रेडियो खरीमा रात 8:45 बजेको आज सुने बीबीसी नेपाली सेवा।

0: 참.
1: 아저씨는 한번만 더 도착한다 사이다. 도착한 다음에 다시 일단 구이소로 한우 건드리 제가 한번만 더 제가 한우 버스티면 도착한 다음에 다시 일단 이상해 다시 나로 돌아가. 조세를 부리고 사람이 안 나고로 성가를 걸어보고 이상해 더 돌아가서 다시 한번
0: नागरिकता का विषय में व्यक्तिगत नाम जन्म का आधार पर नागरिकता वितरण कर कई व्यक्ति छूटेगा हो सकते उनको भाई साहब इस बारे जिला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी का प्रमुख जिलाधिकारी दीपक राज नेपाल है और ये जन्म का आधार पर नागरिकता देने कानूनी व्यवस्था रहे थे और ये त्यस्त व्यवस्था कायम न रहे को बताए सीमा सुरक्षा का संबंध में उन्होंने जिला का सुरक्षा निकाय भारतीय सीमा सुरक्षा बल से नियमित संपर्क और समन्वय में रहे को तथा अपने समस्या उत्पन्न भाई तत्काल छात्र विरोध समाधान करने के लिए को प्रमुख जिला अधिकारी नेपाल को दावी छ नेपालमा 67 औं संसद दिवस मनाइरहँदा यसको प्रभावकारिता र गुणस्तर बारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमा कायम राख्न सांसदहरू स्वयं मर्यादित जिम्मेवार

0: देख स्वस्थ बच्चा पुजारो भविष्य किसान कार्ड कराओ स्वास्थ्य बताओ
1: स्वास्थ्य कार्य में जोर दिया जाना चाहिए।